हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: मान रहा हूँ।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: गेट लॉस्ट।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ हाँ, नहीं मान रहा, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है,

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर